चिकता मन शयम चनगे मतबी आद तवान मदमक आहन मोमश आख मत कडुई वाक ईता मोमिया चंपी होगे दस पच चंपी होगे मत नो इक इक सुइनम कोरे आने कोरे कीजिक वस को तजोडका चंपी होगे चाया कडुई वाक रोदे सिक कीचट मत पमाक होने न तो कुशो ईता आय हम चम्या आहा मत कमो हाय अवाक रोजी की चट वंजर शाड़े हैं कुछ मस्मा काय चीतम पाइच कुशा तो न तुम जोड़ कुछ नहीं कितम चीतम आप एक एग्जेक्टिव चिपकन की मत पमो न्यू न्यम हो कमो मोहाई चुक मत मई ओ सती कमो ओ आग कमो स्मय सत अचो सत अचो इद मोभिया मस्मा अम्भिया चे घम चिहिम दम महिया सह के अम चो निगे बाप इद महस्य मस्मा चे अय हम चम्भिया आग इदम आमेक चुक को कम चुम सै हको कमन ओय चो हाकु ओय चो इकु गोक्या Network. Stay tuned. I got a few more here. Bring us up to the top of the hour, 9 o'clock.